0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
2: क्या आप जानते हैं कि एम्स्टर्डम दुनिया भर में पहली ऐसी राजधानी है जहां मीट और उससे बनी खाने की चीजों के विज्ञापनों पर रोक लगने वाली है, यानी मीट से बने बर्गर, फ्राइड चिकन, नगेट्स या फिर विंग्स जैसी चीजें अब वहां पोस्टर और होर्डिंग पर नहीं दिखेंगी। साथ ही उन चीजों के एड्स पर भी रोक लगाई जा रही है जो जीवाश्म ईंधनों से चलती हैं, जैसे कि घरों की हीटिंग, विमान, क्रूज या फिर कम्बस्चन इंजन से चलने वाली गाड़ियां। कमाल की बात यह है कि इसी तरह का बैन सिडनी, हेग और फ्लोरेंस समेत दुनिया के 50 शहरों में है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम भी जल्द इस लिस्ट में शामिल होगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इन कदमों का मकसद है जलवायु परिवर्तन को रोकना और लोगों को ग्रीन लाइफ स्टाइल की तरफ ले जाना। मीट का उत्पादन हो या फिर जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल, इनसे बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें पैदा होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन चीजों का जितना कम प्रचार होगा, शायद लोग इन्हें उतना ही कम इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। है ना अच्छी पहल? तो बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या है। इंद्रधनुष में क्यों होते हैं 7 रंग? देखिए आपकी थाली तक पहुंचने वाले नमक को कितनी मशक्कत से बनाया जाता है। और बांग्लादेश में अपने ही घर में संकट झेल रहा है रॉयल बंगाल टाइगर। और अंत में मिलेंगे एक नन्ही ओरंगुटान से।

0: बारिश के बाद आपने कभी आसमान में इंद्रधनुष देखा है? देखा ही होगा, सात रंगों का संगम जिसे हम खुशी और सबको साथ लेकर चलने का प्रतीक मानते हैं। लेकिन इंद्रधनुष में सात रंग क्यों हैं और ये कहां से आए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इंद्रधनुष कुदरत के सबसे रंगीन नजारों में से एक, लेकिन इसके सात रंगों का क्या राज है? सूरज हमारी धरती पर कई तरह के विकिरण डालता है। ऊर्जा की ऐसी तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है और ज्यादातर तो दिखती भी नहीं है, जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो गर्मी का एहसास कराता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिससे सनबर्न होता है। रेंज व्यापक है, लेकिन जब तरंगें 380 से लेकर 780 नैनोमीटर लंबी हों तो हम उन्हें देख सकते हैं और इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब धूप में ये वेवलेंथ मिली हुई होती हैं तो वो सफेद दिखती हैं, लेकिन सटीक परिस्थितियों में ये सफेद रोशनी अलग अलग रंगों में बट सकती है और तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, ज्यादातर इसलिए कि आइजैक न्यूटन ने अपने क्रांतिकारी प्रिज्म प्रयोगों के दौरान यही तय किया था। विजिबल स्पेक्ट्रम में दो रंगों के बीच कोई साफ सीमा रेखा नहीं है। इंद्रधनुष में रंग सहज तरीके से सबसे छोटी वेवलेंथ वाले बैंगनी रंग से सबसे बड़ी वेवलेंथ वाले लाल रंग की तरफ जाते दिखते हैं। रंग तब दिखते हैं जब हवा में झूलती हुई बेशुमार बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं। पानी में प्रकाश हवा की तुलना में धीमा चलता है। जब ये बूंदों से गुजरता है तो यही होता है, इससे रास्ता बदल जाता है। फिर प्रकाश दूसरी तरफ की अंदरूनी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। उनकी लंबाई के अनुसार विभिन्न वेवलेंथ अलग अलग मात्रा में धीमे होते हैं, इसीलिए वो फैल जाते हैं और बूंदों से थोड़े अलग कोण पर बाहर निकलते हैं, तो सफेद प्रकाश बट गया। लेकिन हमें इंद्रधनुष दिखने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। जिस दिशा में आप देख रहे हैं उस हवा में बहुत बड़ी संख्या में बूंदें होनी चाहिए, इसीलिए इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश के आसपास दिखाई देता है। दूसरी बात, सूरज आपके पीछे और आसमान में काफी नीचे होना चाहिए। और तीसरी बात, रोशनी को आपके सामने मौजूद बूंदों पर लगभग 42 डिग्री के कोण पर पड़ना चाहिए, इसीलिए धूप वाले दिनों में झरनों के आसपास भी इंद्रधनुष दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वहां पानी की बूंदों की फुहार होती है। तो सही जगह और सही समय पर खड़े होकर जब धूप नम हवा पर पड़ रही हो तो आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। गुजरात में कच्छ के छोटे रण में गर्मियों में तापमान आमतौर पर 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और कभी कभी तो पारा 47-48 डिग्री सेल्सियस को छूने लगता है। वहां इतनी गर्मी में हजारों मजदूर नमक बनाते हैं ताकि हमारे आपके खाने का स्वाद बना रहे, लेकिन इससे उनका अपना जीवन बेहद मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि उनके सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। ये नमक है, यही नमक कंचन की रोजी रोटी है। वो उन हजारों मजदूरों में शामिल हैं जो यहाँ कच्छ के छोटे रण में नमक के मैदानों में काम करते हैं, चिलचिलाती और बर्दाश्त न हो सकने वाली गर्मी के बीच। कंचन कहती हैं कि कई बार तो बीमार होने के बावजूद काम करना पड़ता है।
1: गोली ले लेते हैं, जब तबीयत बिगड़ जाती है, बदन में दर्द होता है तो गोली ले लेते हैं, दवाई ले लेती हूँ और फिर काम पर लग जाती हूँ।
0: नमक के मैदानों में काम करने की वजह से कंचन के पैरों की ये हालत हुई है। भारत की कुल जरूरत का 3/4 नमक गुजरात से आता है। यहाँ रेगिस्तान में पड़ने वाली सख्त गर्मी नमक के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वही गर्मी यहाँ काम करने वाले मजदूरों के जीवन को मुश्किल बनाती है। भरत सोमेरा एक एनजीओ के सदस्य हैं जो नमक मजदूरों के बीच काम करता है।
2: 8 महीने के लिए वो नमक पकाने रन में जाते हैं, नमक पकाने जाते हैं, सितंबर के एंड में वो चले जाते हैं और ये अप्रैल के एंड में वो वापस आ जाते हैं। पूरे 8 महीने वो रन में फैमिली के साथ रुकते हैं। पूरे रन में अभी 8,500 फैमिली वो अभी नमक पका रहे हैं।
0: करीब 50,000 लोग साल के 8 महीने यहाँ दूर दराज के नमक के मैदानों में गुजारते हैं।

0: जहां ना तो बिजली है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं। पीने और दूसरी जरूरतों के लिए पानी हर 25 दिन में आने वाले टैंकरों से मिलता है। शरीर में पानी की कमी और तेज गर्मी कई बीमारियों को जन्म देती है, लेकिन यहां काम करने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास रोजी रोटी का कोई और जरिया नहीं है।
1: 30 साल से ऐसी ही गर्मी में काम कर रहा हूँ, इससे सिर में दर्द होता है। दिक्कत तो है, लेकिन रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है।
2: रोजी रोटी मतलब करूँ थोड़े।
3: गर्मी तो बढ़ती है, काम नहीं होता तो छांव में बैठ जाते हैं, लेकिन जब गाड़ी नमक लेने आती है तो काम करना पड़ता है। धूप बहुत तेज लगती है तो गाड़ी की ही छांव में बैठ जाते हैं।
0: इन लोगों के पास ना तो खेती की जमीन है और ना ही मवेशी, इसीलिए ये लोग यहाँ सख्त गर्मी में काम करने को मजबूर हैं, ताकि हमें नमक मिलता रहे। दुनिया में अभी जितने रॉयल बंगाल टाइगर हैं, उनमें से 3/4 भारत में हैं। भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी बाघ पाए जाते हैं। बांग्लादेश में इन बाघों का सबसे बड़ा आवास सुंदरबन है, फिर भी वहां ये संकट झेल रहे हैं। 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, यानी खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियों का स्वर्ग। इसका 40% हिस्सा भारत में है और 60% बांग्लादेश में। सुंदरबन के जंगल रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर हैं, लेकिन वहां का सबसे बड़ा परभक्षी होने के बावजूद ये जानवर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, खासकर बांग्लादेश में, जहां 2024 में बाघों की संख्या 125 बताई गई थी। बांग्लादेश बीते 15 साल से सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस दौरान उनकी संख्या में हर साल सिर्फ 2 का इजाफा हुआ है।
1: नहीं नहीं, मैं टाइगरों की संख्या से संतुष्ट नहीं हूं, और बाघ चाहिए, क्योंकि हमारे यहां 6,017 वर्ग किलोमीटर में सुंदरबन है। 125 नहीं, 130 नहीं, यहाँ 500 बाघ होने चाहिए।
0: अब्दुल गाजी का दावा है कि उन्होंने 36 टाइगरों को लोगों की गोलियों या फिर ट्रैप जाल से बचाया है, साथ ही टाइगरों के पंजों से 106 लोगों की भी रक्षा की है। दरअसल सुंदरबन में बाघों की बहुत दहशत है, इसीलिए इंसानों से अक्सर उनका टकराव होता है। इसके अलावा एक्सपर्ट कहते हैं कि शिकार, प्राकृतिक आवासों का सुकड़ना और जलवायु परिवर्तन, सुंदरबन के बाघ एक साथ बहुत सी चुनौतियों को झेल रहे हैं।
4: टाइगर पोचिंग, डियर पोचिंग,
5: बाघों का शिकार, हिरणों का शिकार और प्राकृतिक आपदाएं भी जो सुंदरबन को प्रभावित करती हैं, जैसे तूफान आलिया, सिद्र और रेमाल, वो भी बाघों की जान लेते हैं। मेरे हिसाब से बाघों की आबादी में धीमी वृद्धि के यही कारण है।
0: बाघ जंगल में घास चरने वाले जानवरों को खाकर जंगल की रक्षा करते हैं, इससे जंगल फलता फूलता है और तटरेखा को कटाव और तूफानों से बचाता है।
4: बाघ बचले सुंदरबन बचे, सुंदरबन प्रोटेक्टेड।
5: बाघ बचे तो सुंदरबन बचेगा और उसकी खाद्य श्रृंखला बची रहेगी, इससे सुंदरबन पर निर्भर लोगों की रोजी रोटी भी बनी रहेगी,
4: जीविका इंश्योर्ड होगी।
5: साथ ही ये बांग्लादेश को जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों से निपटने में भी मदद करेगा।
0: लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऐसा परिवेश बनाना है जहां इंसान और जानवर एक दूसरे से खतरा न महसूस करें। और अब मिलते हैं एक नन्ही सी औरंगुटान और उसकी माँ से। स्पेन के किड़िया घर में ये मादा औरंगुटान अपने बच्चे की गर्भ नाल को खा रही है, इसका मतलब है कि जन्म अभी अभी हुआ है। इस मादा औरंगुटान मुका का ये तीसरा बच्चा है, जिसका जन्म चिड़िया घर देखने आए लोगों के सामने ही हुआ। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
6: इस जन्म

0: ने हमें हैरान कर दिया। ये दर्शकों के सामने ही हुआ और हमने भी प्रकृति को अपना काम करने दिया, क्योंकि कोई समस्या नहीं थी, सब प्राकृतिक तरीके से हुआ।
1: ओरंगुटान जैविक रूप से इंसानों के बहुत करीब माने जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनका डीएनए 96-97% इंसानों के डीएनए से मेल खाता है। ओरंगुटान को लुप्त प्राय प्रजातियों में रखा गया है, क्योंकि सिमटते बसेरे, वनों की कटाई और गैर कानूनी शिकार की वजह से उनकी आबादी घट रही है। अभी दुनिया में करीब 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक ओरंगुटान हैं, और इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षावन इनका प्राकृतिक बसेरा हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका
2: जी सी एक पेशकश जी तुसी सुनी है, काफी इनफॉरमेशन जी ए चंगी वाली सी जी अक्सर अपन जिंदगी दे विच नहीं जान पांदे। मेरा दिल किया भी क्यों नहीं है ते शेयर की जाए इनफॉरमेशन ते ए बारे जानकारी जी अगे लैके आई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों दे विच तुहानू पता भी इंडिया दे विच अनाउंसमेंट हुई भी इंटरनेशनल जिहड़ा मनी है विदेशी मुद्रा जिन्हों कहते हैं तो उन्होंने कंट्रोल करो, बाहर ना जाओ, घूमो फिर रिलेटेड जिन्हें ने काफी चीजा सामने आई ते ए भी कई कुछ जरा अलग अलग लोग ने अपनी अपनी गल्ला पता जिन्हें ने रखिया सारे सामने। पर अज आप थोड़ी जी गलबात अगे वधाना जी चीज आप अगे लैके जानी ओद एक खबर जी मैं लगता मैं पहला थोड़ी शेयर कर ला फिर ते चीजा शेयर करते हैं ते आज दे प्रोग्राम च, क्योंकि ये प्रोग्राम तुसी मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम 7-8 ते संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनते हो। अज का प्रोग्राम जेड़ा है 5 बजे तक चलेगा, बट प्रोग्राम दे विच ये जेड़ी एक छोटी जी खबर है ये पहला शेयर करते हैं, फिर इस तों बाद आप अपनी होर गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल शेयर करदा जी। मैं सबरंग रेडियो 94.7 FM ते।
3: भारत सरकार ने चांदी की आयात नीति में संशोधन कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इसकी घोषणा की है। इस संशोधन के बाद चांदी के आयात को भारत में फ्री से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी पहले चांदी आयात करने के लिए केवल इम्पोर्ट ड्यूटी देनी होती थी, लेकिन अब चांदी आयात करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास पहले इसके लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा और लाइसेंस मिलने के बाद ही चांदी के आयात की अनुमति दी जाएगी। खास बात यह है कि ऐसी कोई शर्त सोने के साथ नहीं रखी गई है, जो कि चांदी के मुकाबले काफी महंगा है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 12 मई को सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई थी। इसका मकसद साफ था कि सोना और चांदी महंगे होने से इसकी खरीदारी कम होगी, जिससे भारत को इसके आयात के लिए कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी। अब डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 16 मई को चांदी के आयात को लेकर अपना नया आदेश जारी किया है, यानी सोने चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के महज 4 दिन के बाद यह फैसला लिया गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के निदेशक अजय श्रीवास्तव कहते हैं, अब तक आप इम्पोर्ट ड्यूटी देकर जितनी चाहे चांदी इम्पोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब DGFT तय करेगा कि आपको चांदी के इम्पोर्ट का लाइसेंस देना है या नहीं। वो कहते हैं, दरअसल भारत और UAE के बीच साल 2022 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत को UAE से आयात होने वाली चांदी पर हर साल इंपोर्ट ड्यूटी 1% कम करनी थी। इस तरह से फिलहाल भारत को UAE से चांदी आयात करने पर केवल 7% आयात शुल्क देना पड़ता था, जबकि अगर आप ब्रिटेन से चांदी आयात करते हैं तो आपको 15% आयात शुल्क देना होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर था। हालांकि सरकार ने इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई है, लेकिन अगर इसका मकसद विदेशी मुद्रा बचाना होता तो चांदी से कई गुना महंगे सोने के लिए ऐसा फैसला किया जाता। अजय श्रीवास्तव भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पद पर रह चुके हैं। उनका मानना है UAE से सोने के आयात पर अन्य देशों के मुकाबले केवल 1% की छूट है, यानी ये 14% है, जो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन चांदी के मामले में हो सकता है कि सरकार को आशंका हो कि उसकी पॉलिसी का फायदा उठाकर कोई भी कारोबार ही UAE के जरिए भारत तक चांदी ले आएगा। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है।

0: ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब

0: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट

आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.

बहुत लोग देखे हैं जो पार्टी नंबर्स बहुत दिल लगाकर गाते हैं, लेकिन गजलें इतने सारे लोग एक साथ गाने वाले इतने सुर में पहली बार देखा है, क्या बात है।

0: इसे हम खुशी और सबको साथ लेकर चलने का प्रतीक मानते हैं। लेकिन इंद्रधनुष में सात रंग क्यों हैं और ये कहां से आए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इंद्रधनुष कुदरत के सबसे रंगीन नजारों में से एक, लेकिन इसके सात रंगों का क्या राज है? सूरज हमारी धरती पर कई तरह के विकिरण डालता है। ऊर्जा की ऐसी तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है और ज्यादातर तो दिखती भी नहीं है, जैसे कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो गर्मी का एहसास कराता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिससे सनबर्न होता है। रेंज व्यापक है, लेकिन जब तरंगे 380 से लेकर 780 नैनोमीटर लंबी हों तो हम उन्हें देख सकते हैं और इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब धूप में ये वेवलेंथ मिली हुई होती हैं तो वो सफेद दिखती हैं, लेकिन सटीक परिस्थितियों में ये सफेद रोशनी अलग अलग रंगों में बट सकती है और तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, ज्यादातर इसलिए कि आइजैक न्यूटन ने अपने क्रांतिकारी प्रिज्म प्रयोगों के दौरान यही तय किया था। विजिबल स्पेक्ट्रम में दो रंगों के बीच कोई साफ सीमा रेखा नहीं है। इंद्रधनुष में रंग सहज तरीके से सबसे छोटी वेवलेंथ वाले बैंगनी रंग से सबसे बड़ी वेवलेंथ वाले लाल रंग की तरफ जाते दिखते हैं। रंग तब दिखते हैं जब हवा में झूलती हुई बेशुमार बूंदें प्रिज्म की तरह काम करती हैं। पानी में प्रकाश हवा की तुलना में धीमा चलता है। जब ये बूंदों से गुजरता है तो यही होता है, इससे रास्ता बदल जाता है। फिर प्रकाश दूसरी तरफ की अंदरूनी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। उनकी लंबाई के अनुसार विभिन्न वेवलेंथ अलग अलग मात्रा में धीमे होते हैं, इसीलिए वो फैल जाते हैं और बूंदों से थोड़े अलग कोण पर बाहर निकलते हैं तो सफेद प्रकाश बट गया। लेकिन हमें इंद्रधनुष दिखने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। जिस दिशा में आप देख रहे हैं उस हवा में बहुत बड़ी संख्या में बूंदें होनी चाहिए, इसीलिए इंद्रधनुष आमतौर पर बारिश के आसपास दिखाई देता है। दूसरी बात, सूरज आपके पीछे और आसमान में काफी नीचे होना चाहिए। और तीसरी बात, रोशनी को आपके सामने मौजूद बूंदों पर लगभग 42 डिग्री के कोण पर पड़ना चाहिए, इसीलिए धूप वाले दिनों में झरनों के आसपास भी इंद्रधनुष दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वहां पानी की बूंदों की फुहार होती है। तो सही जगह और सही समय पर खड़े होकर जब धूप नम हवा पर पड़ रही हो तो आप इंद्रधनुष देख सकते हैं। गुजरात में कच्छ के छोटे रण में गर्मियों में तापमान आमतौर पर 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और कभी कभी तो पारा 47-48 डिग्री सेल्सियस को छूने लगता है। वहां इतनी गर्मी में हजारों मजदूर नमक बनाते हैं ताकि हमारे आपके खाने का स्वाद बना रहे, लेकिन इससे उनका अपना जीवन बेहद मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि उनके सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। ये नमक है, यही नमक कंचन की रोजी रोटी है। वो उन हजारों मजदूरों में शामिल हैं जो यहाँ कच्छ के छोटे रण में नमक के मैदानों में काम करते हैं, चिलचिलाती और बर्दाश्त न हो सकने वाली गर्मी के बीच। कंचन कहती हैं कि कई बार तो बीमार होने के बावजूद काम करना पड़ता है।
1: गोली ले लेते हैं, जब तबीयत बिगड़ जाती है, बदन में दर्द होता है तो गोली ले लेते हैं, दवाई ले लेती हूँ और फिर काम पर लग जाती हूँ।
0: नमक के मैदानों में काम करने की वजह से कंचन के पैरों की ये हालत हुई है। भारत की कुल जरूरत का 3/4 नमक गुजरात से आता है। यहाँ रेगिस्तान में पड़ने वाली सख्त गर्मी नमक के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वही गर्मी यहाँ काम करने वाले मजदूरों के जीवन को मुश्किल बनाती है। भरत सोमेरा एक एनजीओ के सदस्य हैं जो नमक मजदूरों के बीच काम करता है।
2: 8 महीने के लिए वो नमक पकाने रन में जाते हैं, नमक पकाने जाते हैं, सितंबर के एंड में वो चले जाते हैं और ये अप्रैल के एंड में वो वापस आ जाते हैं। पूरे 8 महीने वो रन में फैमिली के साथ रुकते हैं। पूरे रन में अभी 8,500 फैमिली वो अभी नमक पका रहे हैं।
0: करीब 50,000 लोग साल के 8 महीने यहाँ दूर दराज के नमक के मैदानों में गुजारते हैं, जहाँ ना तो बिजली है और ना ही स्वास्थ्य सेवाएं। पीने और दूसरी जरूरतों के लिए पानी।

0: हर 25 दिन में आने वाले टैंकरों से मिलता है। शरीर में पानी की कमी और तेज गर्मी कई बीमारियों को जन्म देती है, लेकिन यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि उनके पास रोजी रोटी का कोई और जरिया नहीं है।
1: 30 साल से काम कर रहा हूँ,
2: 30 साल से ऐसी ही गर्मी में काम कर रहा हूँ। इससे सिर में दर्द होता है, दिक्कत तो है, लेकिन रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है।
1: रोजी रोटी माटे तो करूँ पड़े।
3: गर्मी तो बढ़ती है, काम नहीं होता तो छांव में बैठ जाते हैं, लेकिन जब गाड़ी नमक लेने आती है तो काम करना पड़ता है। धूप बहुत तेज लगती है तो गाड़ी की ही छांव में बैठ जाते हैं।
0: इन लोगों के पास ना तो खेती की जमीन है और ना ही मवेशी, इसीलिए ये लोग यहाँ सख्त गर्मी में काम करने को मजबूर हैं, ताकि हमें नमक मिलता रहे। दुनिया में अभी जितने रॉयल बंगाल टाइगर हैं, उनमें से 3/4 भारत में हैं। भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी बाघ पाए जाते हैं। बांग्लादेश में इन बाघों का सबसे बड़ा आवास सुंदरबन है, फिर भी वहां ये संकट झेल रहे हैं। 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव जंगल है, यानी खारे पानी में उगने वाली वनस्पतियों का स्वर्ग। इसका 40% हिस्सा भारत में है और 60% बांग्लादेश में। सुंदरबन के जंगल रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर हैं, लेकिन वहां का सबसे बड़ा परभक्षी होने के बावजूद ये जानवर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, खासकर बांग्लादेश में, जहां 2024 में बाघों की संख्या 125 बताई गई थी। बांग्लादेश बीते 15 साल से सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस दौरान उनकी संख्या में हर साल सिर्फ 2 का इजाफा हुआ है।
2: नहीं नहीं, मैं टाइगरों की संख्या से संतुष्ट नहीं हूँ, और बाघ चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ 6,017 वर्ग किलोमीटर में सुंदरबन है। 125 नहीं, 130 नहीं, यहाँ 500 बाघ होने चाहिए।
0: अब्दुल गाजी का दावा है कि उन्होंने 36 टाइगरों को लोगों की गोलियों या फिर ट्रैप जाल से बचाया है, साथ ही टाइगरों के पंजों से 106 लोगों की भी रक्षा की है। दरअसल सुंदरबन में बाघों की बहुत दहशत है, इसीलिए इंसानों से अक्सर उनका टकराव होता है। इसके अलावा एक्सपर्ट कहते हैं कि शिकार, प्राकृतिक आवासों का सुकड़ना और जलवायु परिवर्तन, सुंदरबन के बाघ एक साथ बहुत सी चुनौतियों को झेल रहे हैं।
4: टाइगर पोचिंग, डियर पोचिंग,
3: बाघों का शिकार, हिरणों का शिकार और प्राकृतिक आपदाएं भी जो सुंदरबन को प्रभावित करती हैं, जैसे तूफान आलिया, सिद्र और रेमाल, वो भी बाघों की जान लेते हैं। मेरे हिसाब से बाघों की आबादी में धीमी वृद्धि के यही कारण है।
0: बाघ जंगल में घास चरने वाले जानवरों को खाकर जंगल की रक्षा करते हैं, इससे जंगल फलता फूलता है और तटरेखा को कटाव और तूफानों से बचाता है।
4: बाघ बचले सुंदरबन बचे, सुंदरबन प्रोटेक्टेड।
3: बाघ बचे तो सुंदरबन बचेगा और उसकी खाद्य श्रृंखला बची रहेगी, इससे सुंदरबन पर निर्भर लोगों की रोजी रोटी भी बनी रहेगी,
4: जीविका इंश्योर्ड होगी।
3: साथ ही ये बांग्लादेश को जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों से निपटने में भी मदद करेगा।
4: सुंदरबन कंजर्वेशन ওই জায়গাটা কো হচ্ছে আমাদের আপনার সাপোর্ট করবে।
0: लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ऐसा परिवेश बनाना है जहां इंसान और जानवर एक दूसरे से खतरा ना महसूस करें। और अब मिलते हैं एक नन्ही सी ऑरंगुटान और उसकी माँ से। स्पेन के चिड़ियाघर में ये मादा ऑरंगुटान अपने बच्चे की गर्भनाल को खा रही है, इसका मतलब है कि जन्म अभी अभी हुआ है। इस मादा ओरंगुटान मुका का ये तीसरा बच्चा है, जिसका जन्म चिड़ियाघर देखने आए लोगों के सामने ही हुआ। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।
2: इस जन्म ने हमें हैरान कर दिया, ये दर्शकों के सामने ही हुआ और हमने भी प्रकृति को अपना काम करने

0: दिया क्योंकि कोई समस्या नहीं थी, सब प्राकृतिक तरीके से हुआ।
1: ओरंगुटान जैविक रूप से इंसानों के बहुत करीब माने जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि उनका डीएनए 96-97% इंसानों के डीएनए से मेल खाता है। ओरंगुटान को लुप्त प्राय प्रजातियों में रखा गया है क्योंकि सिमटते बसेरे, वनों की कटाई और गैर कानूनी शिकार की वजह से उनकी आबादी घट रही है। अभी दुनिया में करीब 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख तक ओरंगुटान हैं और इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षावन इनका प्राकृतिक बसेरा हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। होगी आपसे जल्द मुलाकात।
2: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
3: गर्म जोशी, समझदारी
2: इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच भी गल बात कर सकते हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
3: नवे पेशेंट्स हुन एक्सेप्ट हो रहे ने, आज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
2: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
2: थोड़े परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
4: नमस्ते, सत श्री अकाल।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।

0: फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करदा है।
1: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील कर। फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो,
0: कॉल करो 587 दी फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करदा है।
1: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
0: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
1: ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਕਿੰਗਸ ਵਿਊ ਬੁਲੇਵਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ 587-360-6890।
0: ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।
2: ਹੈਲੋ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0303-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

कि ट्रंप अगर आए तो बताया जाए कि चीन मेहमान का इंतजार तो कर रहा है मगर उस इंतजार में बेकरारी नहीं है। इस बेकरारी को आप कैसे समझेंगे? विमान के गेट से ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी बाहों को फैला देते हैं और दूर से ही गले मिलने के लिए चले आ रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति जायद अल नहयान उनकी तरफ दो कदम बढ़ते हैं, उससे पहले चार कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री मोदी गले लगा लेते हैं। इसे कहते हैं बेकरारी। लेकिन जब आप चीन के राष्ट्रपति को किसी मेहमान का स्वागत करते देखेंगे, आपको ऐसी बेकरारी या जल्दबाजी नजर नहीं आएगी। एयरब्रिज पर स्वागत की यह पहली महत्वपूर्ण तस्वीर है। इससे पहले तो एयरपोर्ट पर सीढ़ियों से उतरते और लाल कालीन पर स्वागत की तस्वीरों को महत्वपूर्ण बताया जाता था, अब यहाँ एयरब्रिज पर अकेले अकेले मिला जा रहा है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी अक्सर गले मिल जाते हैं। उनके गले मिलने की अक्सर आलोचना होती है कि इससे भारत हल्का लगता है, प्रधानमंत्री की गंभीरता कम होती है और गले मिलने की शैली से विदेश नीति में कोई खास गर्माहट भी नहीं आती। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम आलोचनाओं के बाद भी गले मिलने की अपनी शैली में आज तक बदलाव नहीं किया। अगर विदेश नीति में दो नेताओं के बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण होगा तो सभी का होगा। इसी लिहाज से ग्रेट हॉल ऑफ पीपल की सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के वीडियो का इस बार भी विश्लेषण किया गया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि इसी तरह 2017 में भी चीन ने मुलाकात से पहले अभ्यास इस तरह से किया था कि एक भी फ्रेम में शी जिनपिंग आपको पहले से इंतजार करता हुआ ना दिखें। आप इस वीडियो में शी जिनपिंग को सीढ़ियों से उतरता हुआ देखते हैं और कुछ देर के बाद देखते हैं कि ट्रंप का काफिला चला आ रहा है। जब तक काफिला करीब पहुंचता है, शी जिनपिंग नीचे उतरते हैं। दुनिया भर के कैमरे यहां खड़े हैं। जब ट्रंप कार से उतरते हैं, जिनपिंग वहां खड़े मिलते हैं। यानी ट्रंप पहुंचते हैं तभी जिनपिंग भी पहुंचते हैं। ऐसा नहीं होता कि ट्रंप के आने के बहुत पहले से शी जिनपिंग उतरकर इंतजार कर रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं। 2017 में भी चीन ने ऐसी बेकरारी नहीं दिखाई और 2026 में भी नहीं। एक एक मिनट की टाइमिंग पहले से ही कर ली गई थी ताकि जिनपिंग इंतजार करते ना दिखे। यहां तक कि ट्रंप के स्वागत में जो गार्ड्स तैनात किए गए उनकी भी लंबाई का खास ध्यान रखा गया। गार्ड्स की औसत लंबाई 188 सेंटीमीटर रखी गई, महिला गार्ड्स की लंबाई 175 सेंटीमीटर। चीन ने इस बहाने यह धारणा तोड़ दी कि चीन के लोग अमेरिका की तरह लंबे नहीं होते। खुद जिनपिंग 180 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 11 इंच के हैं। ट्रंप की लंबाई 190 सेंटीमीटर है, जिनपिंग से थोड़े से ही लंबे हैं ट्रंप। दोनों की लंबाई को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जब जिनपिंग ट्रंप से 4 इंच छोटे हैं तब वीडियो में दोनों बराबर कैसे दिखाई दे रहे हैं। चीन कभी उछल कूद नहीं करता, ना तो उसने समय से पहले उछल कूद मचाई कि सुपर पावर बन गया या विश्वगुरु बन गया, और ना सुपर पावर बन जाने के बाद नए अमीर या हिंदी प्रदेश के बाहुबलियों की तरह अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अमीर चीन भी हो चुका है मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि खानदानी अमीर नहीं है। बात किरदार की होती है और आपको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने जिस स्थिरता का प्रदर्शन किया वह समभाव की अवधारणा के करीब है। चीन का बर्ताव योग की अवधारणा से मेल खाता है और जो योग की बात करते हैं उनका बर्ताव योग की समझ के ठीक उल्टा नजर आता है। जबकि ट्रंप बीजिंग रवाना होने से पहले और पहुंचकर भी शेखी बघारने में लगे रहे कि उनके साथ देखो कौन जा रहा है, इस ताकत के आगे चीन को झुकना पड़ेगा। ट्रंप ने बताया कि उनकी टीम में शामिल लोग अपने अपने क्षेत्र के नंबर वन हैं। इलन मॉस्क, जेंसन हुआंग, ब्लैक रॉक के लैरी पिंक, माइक्रोन के संजय मेहरोत्रा इसमें शामिल हैं। ट्रंप के साथ 17 बड़ी कंपनी

कंपनियों के सीईओ गए जिनके बिजनेस की वैल्यू 16.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर बताई जा रही थी। ट्रंप ने कहना भी शुरू कर दिया, मैं राष्ट्रपति शी से कहूंगा चीन को इनके लिए खोल दीजिए, क्योंकि ये लोग चीन के लोगों के जीवन को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। ट्रंप अपनी टीम की ताकत का प्रदर्शन करते रहे, मगर चीन को इन बातों से कोई फर्क पड़ा नहीं। चीन ने मस्क को नकारा नहीं, चीन की कंपनियों के सीईओ भी मस्क के साथ तस्वीरें लेते रहे, लेकिन चीन को पता है कि मस्क की टेस्ला के सामने उसकी अपनी बीवाईडी कार किसी भी तरह से कम नहीं। तमाम विश्लेषणों में कहा गया कि चीन ने जिस गंभीरता का प्रदर्शन किया है वह देखने और सीखने लायक है। ट्रंप पर भी जिनपिंग की गंभीरता का अच्छा असर हुआ। जो ट्रंप यूरोप के नेताओं को कुछ भी बोल देते हैं, जिनपिंग के सामने इस तरह से हरकत कर रहे थे जैसे जिनपिंग स्कूल के प्रिंसिपल हों और ट्रंप दूसरी कक्षा के विद्यार्थी। बीजिंग में ट्रंप का व्यवहार बदला हुआ नजर आया और ट्रंप की वाणी भी संभली हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी के बारे में उन्होंने क्या कह दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस में किस तरह बर्ताव हुआ, उनके कपड़ों तक का अपमान हुआ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लेकर जब तब कुछ भी बोल देते हैं, ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात करने लग जाते हैं, लेकिन जिनपिंग के सामने ट्रंप के बर्ताव को देखकर दुनिया हैरान कि लगता है दो तरह के ट्रंप हैं। यूरोप के नेताओं के लिए ट्रंप अलग हैं और चीन के जिनपिंग के लिए दूसरे ट्रंप हैं। इस यात्रा से अमेरिका को क्या हासिल हुआ, अमेरिका का मीडिया ट्रंप के दावों से मुतमईन नहीं है। ट्रंप ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि कोई बड़ा इतिहास बन गया हो। शी जिनपिंग ने ट्रंप का कहीं से अपमान नहीं किया, दिखाने की भी कोशिश नहीं की कि ट्रंप को कमतर साबित किया जा रहा है। बस उनका सम्मान इस तरह से किया गया कि सम्मान की रस्म भी पूरी हो गई और मेहमान के सर पर बादशाह का ताज भी नहीं रखा गया। जिनपिंग ने इस तरह से भी नहीं दिखाया कि दो दुश्मन मिल रहे हैं। इस मुलाकात की कलात्मकता विदेश संबंधों में एक ऐसे संधि मिलन जैसी रही जिसमें एक संधि को मलाल रहा कि उसके बेटे को नई कार नहीं मिली मगर रस्म के लिए गले मिलता रहा। भारत की शादियों में जब संधि मिलन हो रहा हो तब उसके आसपास खड़े रहा कीजिए और देखिए जबरन वसूली के लिए आपको किस तरह की बुदबुदाहट सुनाई देती है। जिनपिंग ने ट्रंप के दौरे के पहले ही दिन कह दिया कि ताइवान के मामले को अगर अमेरिका ने ठीक से हैंडल नहीं किया तो दोनों देशों के बीच के अच्छे संबंध बिगड़ जाएंगे। एक तरह से जिनपिंग ने ट्रंप को ताइवान पर कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, हर कदम पर उनके लिए सीमाएं तय कर दी। उन्हें बता दिया कि ताइवान का मामला चीन के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन है। चीन की ओर से जारी बयान में जिनपिंग का वक्तव्य छपा है कि उन्होंने ट्रंप से कहा कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका ने सावधानी नहीं बरती तो दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है। फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ताइवान के लोगों को आपके इस दौरे के बाद ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए या कम, इस पर ट्रंप ने कहा उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं इतना कहूंगा कि मैं किसी के स्वतंत्र हो जाने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। हमारे लिए 9,500 मील दूर जाकर युद्ध लड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि ताइवान थोड़ा कूल डाउन हो जाए, चीन भी कूल डाउन हो जाए। इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप पीछे हट गए हैं। एक समय था कि जब ताइवान को लेकर अमेरिका चीन को धमकाया करता था, लेकिन ट्रंप ने अपने सुर बदल लिए। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका को चीन के मुद्दे को बहुत ज्यादा सावधानी से डील करनी चाहिए। अमेरिका के बयान में ताइवान को लेकर कोई बात नहीं लिखी गई है। पहली लाइन में कहा गया है कि ट्रंप की जिनपिंग से अच्छी मुलाकात रही, गुड मीटिंग लिखा है। चीन को पता होगा कि दुनिया इंतजार कर रही है, देखना चाहती है कि जब सुपर पावर अमेरिका
चीन पर

बार बार टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिनपिंग के सामने होंगे तो दोनों की मुलाकात कैसी होगी, दोनों के बयान कैसे होंगे और नजरें किस भाषा में बात कर रही होंगी। बॉडी लैंग्वेज और रूपकों के सहारे विदेश संबंधों को बांचने वाले जिनपिंग से निराश नहीं हुए। जिनपिंग ने उन्हें एक ऐसा मुहावरा दे दिया कि ट्रंप और जिनपिंग की चर्चा छोड़कर सबके सब ग्रीस के मिथकों के स्कॉलर बनने लगे हैं। जिनपिंग ने अपने शुरुआती भाषण में कहा है, क्या चीन और अमेरिका उस तथाकथित थ्यूसिडाइडिस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं ताकि दोनों की प्रतिस्पर्धा टकराव में न बदल जाए। इस एक शब्द से जिनपिंग ने 2500 साल पहले का इतिहास सबके सामने रख दिया। थ्यूसिडाइडिस ट्रैप क्या है, इसकी खोज हो रही है, जो इसके जानकार हैं वो फिर से इसका विवरण सोशल मीडिया में लिखने लगे हैं। प्राचीन ग्रीस के एथेंस में रहने वाला एक इतिहासकार का नाम है थ्यूसिडाइडिस। स्पार्टा और एथेंस के बीच जंग का ब्यौरा करते हुए उन्होंने एक अवधारणा विकसित की और बताने की कोशिश की कि एथेंस और स्पार्टा के बीच लंबे समय तक जंग क्यों होती रही। थ्यूसिडाइडिस ने समझाया कि जब कोई नई शक्ति उभरने लगती है तब पहले से स्थापित शक्ति असुरक्षित महसूस करने लग जाती है। पुरानी शक्ति की घबराहट की वजह से जंग छिड़ जाती है और अंत में नुकसान दोनों शक्तियों को हो जाता है। शी जिनपिंग ने एक तरह से इशारा कर दिया कि चीन और अमेरिका के बीच जंग छिड़ी तो नुकसान दोनों को होगा। शी जिनपिंग एक तरह से शक्ति संतुलन का मतलब भी समझा रहे थे, बता रहे थे कि अमेरिका या न समझे वह हमला करेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ट्रंप को इस वक्त यह बात ठीक से समझ आ गई होगी क्योंकि ईरान के साथ युद्ध में उन्होंने देख लिया ईरान को कमजोर समझने का नुकसान कितना हुआ है। इसीलिए थ्यूसिडाइडिस वाले बयान का काफी विश्लेषण हो रहा है कि चीन ने अमेरिका को उसकी जगह दिखा दी और चीन दुनिया के इतिहास से, इतिहास बोध से अनजान भी नहीं है। शी जिनपिंग का यह बयान यह भी बताता है कि सत्ता शिखर पर पहुंचे लोगों की ऐतिहासिक समझ किस तरह की होनी चाहिए। इसमें भारत के लिए भी सबक है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के संदर्भ में एक्सपर्ट भारत की तरफ भी देख रहे हैं। G20 के आयोजन के समय आप सभी ने देखा कि भारत को सुपर पावर की तरह दिखाने के लिए कितनी बेताबी थी। क्या कुछ नहीं किया गया, हजारों करोड़ रुपए आयोजन में फूंक दिए गए। इस तरह से दिखाया गया जैसे भारत को सारी दुनिया ने ग्लोबल लीडर मान लिया है। आप ट्रंप के बीजिंग दौरे का चीनी मीडिया में कवरेज देखिए और G20 के समय गोदी मीडिया का कवरेज देखिए। आपको कुछ भी नहीं तो कम से कम गंभीरता और हल्केपन के बीच फर्क समझ आ जाएगा। आज भी भारत ब्रिक्स का चेयरमैन है लेकिन ब्रिक्स की तरफ से ईरान के खिलाफ हुए नाजायज युद्ध की निंदा नहीं की गई। ईरान इसका सदस्य है और उसने निंदा करने की मांग की थी। भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, एक साझा बयान तक जारी नहीं हो सका। 28 फरवरी के बाद से भारत की विदेश नीति के एक तरफा हो जाने के नुकसान की आलोचना हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि 12 साल से भारत की विदेश नीति ढोल तमाशे के इंतजाम में उलझी हुई है। जंग के पहले अपने पुराने मित्र ईरान को छोड़कर नए मित्र इसराइल को गले लगा लेना भारत के लिए ठीक नहीं था। कहा जा रहा है कि भारत को भी चीन की तरह इस जटिल दुनिया में गंभीरता का प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी चाल से महासागर को पार करना चाहिए, नेविगेट करना चाहिए। जिनपिंग ट्रंप को बीजिंग के एक बाग में ले गए। बीजिंग के ऐतिहासिक इंपीरियल पैलेस के पास बना चांगनान हाई गार्डन 8-9 सदी पुराना बाग है। बहुत कम लोगों को यहां ले जाया जाता है। ट्रंप ने अनुवादक से पूछा, क्या जिनपिंग किसी और को भी यहां लेकर आ चुके हैं? जवाब में जिनपिंग ने कहा, बहुत कम, पुतिन यहां आ चुके हैं। पुतिन 19 मई को चीन आने वाले हैं। एक समय था जब भारत और चीन बराबरी पर थे, अब वह समय कई दशक पीछे छू

0: टूट चुका है। चीन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। कभी भारत चीन के ऐप को बंद कर देता था, सरकार के समर्थक खुशी से उछल जाते थे। आज भारत चीन के निवेश का स्वागत कर रहा है, सरकार के समर्थक चुप रह जाते हैं। चीन के आयात पर भारत निर्भर हो गया है और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी ज्यादा हो गया है। भारत की विदेश नीति का भूगोल बिखरा हुआ नजर आता है, मगर इसके बाद भी भारत की विदेश नीति दुनिया की सबसे कामयाब नीति है, क्योंकि गोदी मीडिया कामयाब बताता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार
1: जी। सो वैसे गलबात आप चाइना ते ट्रंप दी शुरू की सी, बट एंड अप इंडिया दे हो ये जाके कि भी इंडिया किस तरीके ने सारी गल्ला बातें करता है या जो भी है, बट ये है भी ट्रंप का सिस्टम जो मैं पिछले कुछ एक दिनों तो कहता आ रहा भी चाइना दे विच जड़ी तरक्की है वह पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो हो सकता भी कुछ लोग कहें भी वह जिथे तुम दिखाते हैं शहर का एरिया वह अल्ट्रा डिवेलप है, बट बाकी जो पिंड चले जी अगे अगे जाइए तो उत्थे अत की गरीबी जी नज़र आती है, बट तुम उ जा नहीं सकते इन्नी दूर दूर तक। पर जिन्ना क जगह तो मैं गया वहां तो उत्थे तो एडिया वड्डिया वड्डिया बिल्डिंग्स से इन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लगता है कि वाकई बहुत पैसा जरा लाया जा रहा है। तो इतों के मुकाबले जो सड़क लाइए या पुल लाइए या होर सिस्टम लाइए तो होस्पिटैलिटी भी बड़ी वधिया लगी। एक जनरल आम जे तुसी होटल दे विच भी ठहरदे हो तो जिहड़ा ब्रेकफास्ट जिहड़ा उत्थे मिलदा सीगा, मैनू याद है भी एक गोंगजो दे विच होस्टल है होटल है, होटल दे विच एक रेस्टोरेंट है शर्मा जी रेस्टोरेंट जिहनूं कहिंदे वैजीटेरियन रेस्टोरेंट है, तो इंडियन फूड उत्थे मिलदा जां उहदे नाल चीज़ां जिहड़ियां जरूर मिलदियां, बट रेट जिहड़ा उत्थों दे हिसाब नाल $150 जिहड़ा चाइनीज RMB जिहनूं कहिंदे आ 30 रुपए के करीब हो गया, 30 तो 35 जो भी लाई उन्होंने। जो चाइनीज रेस्टोरेंट के जिथे होटल के रहन का मौका मिले, काफ़ी सस्ता होटल सीगा वो, तो उस तो थोड़ा दूर आ गोंगडन की गल करते हैं, तो मतलब इन्ना समान उत्थे सवेर तो ही जिथे एग मीट दे कई तरह दी वैरायटीज़ ते होर बड़ा कुछ होने दे नाल नाल जदों उत्थे फूड देखिया तो मतलब एक फुल फ्लैज जिन्हों कहते भी लंच तो भी वधिया लंच जिहड़ा उन्होंने अरेंज किया सीगा, तो वह आप जो देखिया जाके हैलो जी हाँ जी मैं तुहानू कॉन्फ्रेंस ते पांदा जी जी तो सुहेल हुणे भी साडे नाल जुड़ चुके हैं जी, जिदा मैं पहला गल की सी अज वैसे स्टूडियो च आन की गल सी, बट हुण प्रोग्राम जिहड़ा है अज संडे है तो थोड़ी जी क्रिकेट ते गलबात करनी है उन्हां दे नाल गलबात करांगे, बट प्रोग्राम नू थोड़ा जिहा मैं होर वाइंड अप करदा तो इन्ना वधिया तरीके का, क्योंकि मेरे नाल एक मेरा दोस्त जिहड़ा कि राधा स्वामी जां 100% वैजीटेरियन है, तो जिन्ना उन्होंने खाना जिहड़ा है वह इंजॉय किया, तो ईवन दो उत्थे कोई भी चीज़ एग या मीट वाली नहीं टेस्ट की, पर उसके बावजूद भी इन्ना कुछ वधिया वधिया वैजीज तो बाकी सारा समान जिहड़ा फूड दे विच रेस्टोरेंट दे विच आम रेस्टोरेंट जिहदा $5-6 तुसी ला सकते हो भी इन्ने क दे विच वह ब्रेकफास्ट सीगा, ना कि $30 का वह ब्रेकफास्ट सीगा कनेडियन की मैं गल करदा। सो इन्ना इन्ना किफायती भी सीगा, वधिया रेट भी चंगे सीगे, तो सिस्टम भी ठीक सीगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कमजोर जिन्हों कहते ना भी अपने कंट्रोल च रखी है महंगाई भी, तो हर एक जड़िया चीज़ा ने उत्थों के लोगों को मिलती है। इन्निया सड़क तो वधिया सीगिया ही जड़िया मेन रोड्स जड़िया होंगे, बट उसके नाल नाल कारा भी बहुत ज़्यादा उत्थे वधिया लेटेस्ट जड़िया उस ज़्यादातर कारा जड़िया हुण EV दी जड़िया नज़र आ रही सीगिया तो ब्रांड न्यू कारा सीगिया, इत्थे ते अपने कई कारण करके कारा टुट भज करके दिखदियां, बट ज़्यादातर उत्थे जड़िया वधिया कारा ही नज़र आंदियां सी। सो आपां अपनी गलबात नूं जारी रखदे हां, ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ
2: ਫੀਮੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
3: ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਵੈਲ ਕੇਅਰਡ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ
2: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ
3: ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁਣ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ
2: ਕਾਲ ਕਰੋ 5873 6890 ਲਾਈਫ

0: लाइन मेडिकल क्लिनिक वॉक इन सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक
1: सनू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890
0: थोड़े परिवार दी सेहत साड़ी जिम्मेदारी

0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0300-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। लिसनिंग टू कैलगरी'स मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 FM।
4: एक बार फिर तो स्वागत है जी सब रंग रेडियो 94.7 अपने सारे लिसनर्स का। अज के प्रोग्राम च जिदा मैं पहला भी गलबात की थी भी साढ़े नाल कप्तान सुहेल यादव जी जावेद जी जड़े ने शामिल होने जा रहे हैं तो सुहेल जी शामिल हो चुके हैं। तो सुहेल जी बहुत बहुत स्वागत है जी ता सब रंग रेडियो ते।
5: बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सब सुनने सलाम नमस्ते सत श्री अकाल
4: जी। बड़ा वधिया आपा की कहंदे आ प्रोग्राम क्रिकेट ते शुरू किया सी पिछे जी मेरा क्योंकि फिर चीन की गल आ गई है। चीन ते हुणे मैं ट्रंप की गल कर रहा सीगा ते चीन दे दौरे तो बाद इवेंट सीगा कल काफी वधिया तरीके नाल होया ते फिर हुण फाइनली जिन्हों कहिंदे ना वी आपां अपने काम दे विच बैक तो शुरू कर लिया ते क्रिकेट की थोड़ी जी जानकारी भी अज आपां अपडेट करिए। तुहाडा किदां रहा पिछे जी थोड़ा सफर जिदा भी तुसीं बिजी रहे काफी
5: काफी बिजी सी क्योंकि सीजन थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया था कैलगरी यूनो ते ओ थोड़ा लेकिन वेदर ने फिर कल तंग किया तुहानू पता ही कल स्नो पै गई सी ते लेकिन इस बार सीजन जिहड़ा क्रिकेट दा और आउटडोर जिहड़े भी तुसीं गेम दा कह सकते सब दा अर्ली स्टार्ट हो गया ते क्योंकि विचकार ही हुंदा कि समर दा मतलब बारिश हो जांदी ते फिर सारे मैच कॉल आउट हो जांदे ने
4: मेहरबानी क्योंकि ये प्रोग्राम जेड़ा ये सारे दे सपोर्ट दे नाल ही बेसिकली हुंदा सो इसे तरीके नाल होया ते काफी वधिया जेड़े दोस्तां ने इन्नी मेहनत कीती सी उहनां दी मेहनत जेड़ी कामयाब हुई सानू इस गल दी काफी खुशी है जी।
5: गल करने क्रिकेट दी गल शुरू कर देने जाहिर पाकिस्तान और बांग्लादेश दी जेड़ी टेस्ट सीरीज चल रही सबनू पता है और सबनू ए भी पता है कि पाकिस्तान पहला टेस्ट हार चुके है। एक बड़ी मतलब के अजीब जी गल इस वास्ते के पाकिस्तान दा हुण जेड़ा लेवल ऑफ क्रिकेट रह गया ना वो आई थिंक बहुत ही लो लेवल ते चला गया की कह सकने हैं। बट यू नो नेबर्स कंट्रीज जन उन जो इंडिया नाल की मुकाबला करना है कोई T20 हो गए या ODI हो गए या टेस्ट मैच हो गए तुसी नेबरिंग कंट्री जिन्हां तुसी क्रिकेट सिखा रहे सो किसी टाइम ते या किसी टाइम नु तुहाडे इत्थे आके सिखदे सी उहनां दे प्लेयर्स इवन अफगानिस्तान है कोई भी ते मेरा मतलब अज तुसी उहनां कोल हारदे आ रहे ते इन्ना लो लेवल चला गया पाकिस्तान क्रिकेट का चाहे वह टेस्ट मैच लै लो चाहे T20 लै लो चाहे वह ODIs लै लो।
4: बिलकुल मैं ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ IPL ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬੋਲਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੁਮਰਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਮਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ
5: ਤੇ
4: ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ

0: ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਲੀਮਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਮੇਂ ਬਚਾ ਹੈ
1: No, just it was a wonderful program and next year hume aur bhi crowd chahiye wahan pe and we want more performances so जी. if you know anybody who is doing performances aur aapko khud ko perform karna hai to aap aake Rajesh se baat kar lo and we'll bring new performances there
0: बिल्कुल जी जो लोगों बेचारों को टाइम ही नहीं मिल पाया शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो तो दुखी होते हैं कई बार अक्सर हो ही जाता है ये सिनेमा मैंने देखा तो बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली और परफॉर्मर होंगे और हम अच्छे तरीके से इसको मैनेज करेंगे जी
1: यस एंड वी नीड मोर क्राउड एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी
0: बिल्कुल जी बिल्कुल सो थैंक यू वेरी मच सलीमा वंस अगेन तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम मैं आपको भी दोबारा फोन करता हूँ 5 बजे के बाद
1: Sounds good. Thank you.
0: Thank you, जी. Thank you.
1: Okay. Bye-bye.
0: एक छोटी ब्रेक ले लेते हैं.

0: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करदा है।
1: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
0: हुण तुसी उहनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
1: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
0: कॉल करो 5873606890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
1: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 5873606890।
0: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
2: नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।